जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आज ये किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 FM MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। लीजिए पेश है सरगम का एक और अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने के साथ फिल्म 420 से, जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना फिल्म जीने की राह से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब पेश है अमित कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना फिल्म आखिर क्यों, जिसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आप सभी श्रोताओं को सुना रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म फर्ज से।

अब पेश है फिल्म धाक का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, जिससे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

लीजिए अब सुनते हैं इंदीवर का लिखा हुआ गाना फिल्म मल्हार से। संगीत दिया है रोशन ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अगला गाना है फिल्म छोटी सी बात से, जिसे गाया है यशोदास और आशा भोसले ने। संगीतकार है सलिल चौधरी और गीतकार है योगेश।

आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना फिल्म यादों की बारात से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

अगला गाना है फिल्म धर्मात्मा का, जिसे गाया है मुकेश और कंचन ने, और उसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने, और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अब पेश है संगीतकार आरडी बर्मन का गाना, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, फिल्म है हम किसी से कम नहीं, और गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में फिल्म रुफू चकर का गाना, जिसके संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी, जिसके गीतकार है गुलशन बावरा।

आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म आंधी से, जिसे अपने आवाजों से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किडनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कटौती खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो विजस्तान। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी एक अलग ही लघु कथा लेकर आया हूं, लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में। और आइए सुनते हैं लघु कथा जिसका शीर्षक है साहब। साहबी ज्यादा दिन नहीं चलती, उसके बाद धरातल पर आना ही पड़ता है। जब साहब रिटायर होते हैं तब उनका सरकारी बंगला, उसका हरा भरा लॉन, ड्राइवरों चपरासियों के साथ बिना आकर नमस्ते करने वालों की भीड़ का एक साथ छोड़ देती है। क्योंकि वो हमेशा से माने बैठा है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, शायद उसके बिना दफ्तर चलना मुश्किल हो जाएगा। लोग आएंगे सलाह मशवरे के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए बेचैन रिटायर साहब उम्मीद भरी आंखों से रास्ते को ही देखते रहते हैं। पर अफसोस, कोई नहीं फटकता। वो पाता है कि उसकी दुनिया उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल गई है। अब कार का दरवाजा भी खुद ही खोलना पड़ता है, और शॉपिंग के वक्त बिल भी खुद ही चुकाना होता है। बेचैन साहब अब मिलनसार होने की कोशिश करते हैं। शादी मुंडन से लेकर तेहरवीं तक हर एक के न्योते की इज्जत करने लग जाते हैं, कोई बुलाए तो सही। वो पाता है कि उसके सामने याचक बने रहने वाले रिश्तेदार अब निष्ठुर हो गए हैं। हैरान परेशान रिटायर्ड साहब अब तो बाल भी डाई करना भूल जाते हैं, तेजी से बूढ़ा होने लगता है। चिड़चिड़ाहट लौट आती है उसकी। हताश साहब घर में साहबी करने की कोशिश करते हैं। बेटा भी ना अनमने से ही पास में आता है, कोशिश करता है कन्ने ही काटे रहें। नाती पोते भी दूर भागते हैं, बीवी उसे नाकाबिले बर्दाश्त घोषित कर देती है, और बड़े जतन से पाला पोसा गया कुत्ता वो भी उसे देखकर बैठ के नीचे घुस जाता है। ऐसे में वो कुड़ता है और नाशुक्री दुनिया को कर रियाता है, दुखी बना रहता है और आसपास वालों को दुखी करता है। रिटायर साहब और कर भी क्या सकते हैं, और जब तक जीता है साहब यही करता रहता है। इन साहबों के अधिकतर बच्चे, बहु बेटे, नाती पोते इनसे दूर, बहुत दूर विदेश में या बड़े शहरों में शिफ्ट हो चुके होते हैं। ये अपना स्वयं का बनाया आलिशान घर माया मोह के चक्कर में छोड़ नहीं पाते हैं, और नतीजतन इनकी जिंदगी अकेले ही कटती है। बीमारी अजारी में कोई साथ नहीं देता, खाना भी रूखा सूखा या फिर जो नौकर ने बना दिया ना वही ठूसना पड़ता है। खाने में नींद में की तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती, मरते वक्त भी कुछ साथ नहीं होता। जब शव से भयंकर बदबू आती है ना तभी घर वाला पुलिस को फोन करता है, हमारे पड़ोस में बदबू आ रही है। उफ, कितना डरावना और विभत्स अमानवीय लगता है ना ये सब। इन सब के जिम्मेदार वो साहब खुद होते हैं, क्योंकि सारा मायाजाल उनका अपना ही रचा हुआ होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय रहते ही, यानी ये साहबगिरी 60 साल तक का खेल है, ऊपर सबका हिसाब होना है। अरे साहब, साहबी छोड़ मानवीयता अपनाओ, समाज और देश के लिए कुछ करो, जिसके लिए साहबगिरी मिली है आपको। मानवता, समाज, देश सदैव रहेगा, साहबगिरी तो चंद दिनों की मेहमान है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये सारी बातें हैं एक रिटायर्ड जज की, जो सारी जिंदगी अपनी जजमेंट देते रहे, लोगों को जज करते रहे। लेकिन दुख की बात है, अपने आप को, समाज को, परिवार को, अपनों को जज नहीं कर पाए। आप ऐसी गलती मत कीजिए, शुरू से ही समाज के बीच में, परिवार के बीच में, अपनों के बीच में अपने ही बन के रहिए। जहां तक बात है रुतबे की, वो अपनी जगह पर है। रुतबा सदा कायम नहीं रहता, प्यार कभी खत्म नहीं होता।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तपकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की तरह।

चील जो बरसों से बस गई है, उसके सीने में जागती है तमाम रात। झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तपकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, टूटते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं, अलग अलग अलग अलग परछाइयों की

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

0: आपने ट्यून किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और आपके साथ मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज इस खास प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे,
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कश्मीर की उस अजीम शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज, अपने अभिनय और अपनी कलम से कश्मीरी कला, नाटक और प्रसारण जगत को एक नया मुकाम दिया। बात हो रही है महान कलाकार, प्रसारक, अभिनेता और निर्देशक आदरणीय पुष्कर बान जी की। कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा बाशिंदा होगा जो उन्हें नाम से, उनके काम से या उनके घड़े हुए किरदारों से ना जानता हो। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से रेडियो और अभिनय के क्षेत्र में जो छाप छोड़ी वो अद्वितीय है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भरत जी। पुष्कर भान जी का जन्म 26 अगस्त 1926 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। कला और रंगमंच के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही गहरा था। 1952 में जब वे रेडियो कश्मीर श्रीनगर से बतौर कलाकार और नाटककार जुड़े तो उन्होंने प्रसारण की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी एक मिसाल है। पुष्कर जी सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं थे, बल्कि वे कश्मीर के आम आदमी के दर्द, खुशी और उनके सरोकारों की आवाज थे। क्या आप जानते हैं कि पुष्कर भान जी का सफर कैसे शुरू हुआ था? साल 1952 में महज 2.5 रुपए के दैनिक वेतन से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी बेमिसाल लेखन शैली और अदायगी के दम पर उन्होंने जल्द ही हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। 2.5 रुपए, सोचिए, इतनी छोटी शुरुआत से एक इंसान ने इतना बड़ा सफर तय किया। लेकिन उनके अच्छे लेखन और अभिनय की उम्दा प्रस्तुति ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाना शुरू कर दी।
0: अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वे बेहद जमीन से जुड़े हुए, सरल और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका हास्य और व्यंग, ह्यूमर एंड स्टायर। समाज की कुरीतियों, भ्रष्टाचार और रोजमर्रा की दिक्कतों पर वे अपने नाटकों के जरिए ऐसी मीठी और तीखी चोट करते थे कि श्रोता हंसते हंसते बहुत गहरी बात समझ जाते थे। उनका अंदाज इतना अपनापन लिए होता था कि जब वे रेडियो पर बोलते तो लगता था जैसे घर का ही कोई बुजुर्ग दलान में बैठकर आपसे बतिया रहा हो।
2: नमस्कार, आई एम विनायक राजदान। आई वॉज बोर्न इन द 1980s, टू लेट टू हैव हर्ड पुष्कर बान लाइव ऑन द रेडियो। Machama had already entered the Kashmiri soul long before I could understand it. So I don't pretend to speak as a witness to his golden era. I can only speak as someone who found his work much later and was moved enough to want to preserve it. At Search Kashmir, we have archived pieces like Sindhbad Machama along with its script and some of his television and radio interviews and documentaries, all generously shared by his own family. And that to me is where his greatness truly lies. Because his work does not need its audience to be present. It survives, it waits, it finds new listeners across time. People like me born decades later, who can still laugh at Machama and still learn Kashmiri from his satire. That is Pushkar Ban's rare legacy. My humble salute to a voice that refuses to fade. Thank you.
0: आइए अब बात करते हैं उनके किरदारों और प्रस्तुतियों की। अभिनय और लेखन के मोर्चे पर उनका गढ़ा और जिया हुआ किरदार मचामा कश्मीरी साहित्य और रेडियो के इतिहास में अमर है। मचामा सीरीज, हीरो मचामा, सिंधबाद मचामा के नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि लोग अपने सारे काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाते थे। इसके अलावा उनका और सोमनाथ साधु जी का लिखा और प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक रेडियो फीचर जून डब लगभग 19 सालों तक बिना थमे चला। जून डब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि कश्मीरी परिवारों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया था, जिसने सामाजिक जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। जुंडब केवल एक रेडियो शो नहीं बल्कि कश्मीरी समाज का आईना भी था। पुष्कर बान जी के कुशल निर्देशन और अभिनय के साथ ये कार्यक्रम बिना रुकावट लगातार बहुत सालों तक चलता रहा। ये अपने आप में एक मिसाल है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, जब हम बहुत छोटे थे तब से हम इस कार्यक्रम को रेडियो कश्मीर श्रीनगर पर सुना करते थे। छोटे होते हुए हमें ये पता नहीं चलता था कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, पर ये पता था कि ये एक ऐसा फीचर है जो हर दिन रेडियो कश्मीर श्रीनगर पर आता था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज इस महान व्यक्ति के 100वें जन्म दिवस पर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ।
3: Some voices never vanish. They become the heartbeat of generations. Shri Pushkar Bhan, the golden voice of Kashmir, a recipient of the Padma Shri and the Sahitya Akademi Award. He enriched generations through his unforgettable performances. Through beloved characters like Zundab and Machama, he brought joy, warmth, and the spirit of Kashmir into countless homes. His voice still echoes. His legacy continues to inspire. Join his legacy.
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। 26 अगस्त 2026 का दिन कश्मीरी कला, संस्कृति और रेडियो प्रसारण के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। आज हम कश्मीर के महान प्रसारक, कुशल अभिनेता और निर्देशक की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी समृद्ध विरासत, रेडियो और रंगमंच के उस दौर की यादें और इस अमर नाम को जीवित रखने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आपके साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय पुष्कर बान जी की, जो रेडियो, कला और थिएटर में एक बहुत बड़ा नाम है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पोते श्री दीपक बान जी। आइए उनसे करते हैं बात, जानते हैं इस लेजेंड के बारे में। तो श्रोताओ, आइए आप सभी को मैं रूबरू करता हूँ आज के हमारे आमंत्रित मेहमान श्री दीपक बान जी के साथ। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz के स्टूडियो में।
4: नमस्कार, थैंक यू भरत जी। ये बहुत ही एक प्रिविलेज है मेरे लिए, बहुत ऑनर है यहाँ पे आना, खासकर उस मौके पर जहाँ पे कि मेरे दादाजी जो श्री पुष्कर बान जी है, उनका एक 100th बर्थडे सेंटिनरी सेलिब्रेशन ईयर हम मना रहे हैं। मैं उनका पोता दीपक बान, और आजकल जो है हम लोग जम्मू में सेटल्ड हैं। उनके बारे में जो भी पता है मुझे, जो देखा है, घर में महसूस किया है, एक माहौल जो बना था उनके साथ, तो उस पर आज मैं जो भी चर्चा हो सकती है उस विषय पर मैं बताऊंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मैं भी खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे लेजेंड की हम आज बात करने जा रहे हैं, उनको और नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे, जिनको हमने बचपन से रेडियो कश्मीर श्रीनगर से सुना है। कई सारे किरदार, कई सारे प्रोग्राम्स, और जिन प्रोग्राम्स ने हमारी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं दीपक जी से महान व्यक्तित्व के बारे में। दीपक जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, मैं और हमारे सारे श्रोता इस महान व्यक्तित्व श्री पुष्कर बान जी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विरासत और यादों के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे हम 100वीं जयंती के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर, आप अपने दादाजी को याद करते हुए आज आपको कैसा महसूस हो रहा है?
4: जी, मैं तो ये भूलूंगा कि ये कैसे गर्व की बात है, ये कैसी फीलिंग है जो कि शायद शब्दों में बयान ना हो सके, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में भी बताया, वो एक सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे लीजेंड रह चुके हैं कश्मीर के कि शायद ही जिनके बारे में जितना बोले उतना कम है। बट मैंने जो उनको देखा है वो उस मौके, उस मुकाम के बाद से देखा है जब वो एक अपने पीक पे सारी चीजें हासिल कर चुके हैं, और तब भी उस इंसान में जो है एक जो रहता है अपना काम करने का जुनून और लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी समस्याएं हो चाहे उनको हंसाना हो, वो चीजें कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। मेरा जन्म तब हुआ था जब उनको ऑलरेडी पद्मश्री मिला था, जब उनको ऑलरेडी साहित्य अकेडमी मिला था, जब उनका मचामा जूंडब ऑलरेडी पीक पर सब जा चुका था। तो उसके बाद से जो मैंने उनको देखा है और जो उनके बारे में घर में जितना हम सुनते थे और जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन है, मैं तो यही बोलूंगा कि इट इज नॉट लेस देन ऑनर कि उनके बारे में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ आज। और ऐसा ओकेजन है कि अगर वो आज होते हमारे बीच तो 26 अगस्त आज उनका एक 100th बर्थडे होता।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी है कि आज उनका 100वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं, और हमारे लिए और रेडियो विदस्ता के लिए और रेडियो विदस्ता के श्रोताओं के लिए इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है। इस दिवस पर हम आपसे बात कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन की कोई ऐसी खास याद जो आज भी आपके दिल के करीब हो, जिसने आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला हो।
4: बचपन में ऐसा था, जब भी उनका काम होता था, वो बहुत सारे जूंडब और बाकी चीज़ों के अलावा रेडियो में बहुत सारे और प्रोग्राम भी करते रहते थे, और ग्रास रूट लेवल से जुड़ते थे। वो उनका था कि अगर कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम हाईलाइट करना है या किसी की समस्या है, किसी गांव की हो चाहे इंसान की हो, वो उस जगह पे जाते थे, वो उनकी खास बात थी
0: जी।
4: तो कभी कभी वो रिकॉर्डिंग के लिए निकलते थे, दूर दराज के गाँवों में जाते थे, तो मेरे को साथ लेके जाते थे, कहते थे आ जाओ घूमने चलते हैं। तो उस टाइम पर एक जीप होती थी, एक रेडियो, उनके पास टेप रिकॉर्डर रहता था साथ में, और मैं भी छोटा सा 4-5 साल का लड़का साथ में निकल जाता था उनके। मेरे लिए तो एक दादाजी थे जिनको मैं पापा जी बुलाता था, पर जब भी मैं उनके पास जहां भी जाता था वहां पे, उस समय शायद मुझे वो रियलाइज नहीं होता था कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। कहीं भी गए, किसी गांव में जाते थे या किसी प्रोग्राम में गए या छोटी सी चीज है कहीं सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, तो एक ऐसा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, एक ऐसा वेलकम सा उनको मिलता था कि जब मैं आज देखता हूं तो लगता था कि बहुत ही एक VVIP टाइप की पर्सनैलिटी थी
0: जी।
4: पर मेरे घर में रहना उनका जो एक था एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा, और कभी वो फीलिंग तब नहीं आई। तो ये उनकी जो चीजें हैं, जब मैं आज देखूं, याद करूं, तब मुझे एहसास होता है कि उनका काम था ये जिसने उनकी ऐसी एक पहचान बनाई। और उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं, कोई उतना टेलीविजन नहीं था कि लोग जाने,
0: सोशल मीडिया नहीं था,
4: सिर्फ एक आवाज और एक रेडियो
0: जी।
4: उस किरदार से वो जाने जाते थे
0: जी।
4: एंड जूंडब में अगर उनका जो किरदार था मामा पिप जी का या मचामा का, तो एक लोकल पॉपुलेशन को उसी से पता था कि अच्छा मामा जी आ गए। ये नहीं पता था कि ये पुष्कर भान कौन चेहरा है उसके पीछे,
0: यानी कि किरदार से उनको,
4: किरदार
0: लोग
4: से
0: पहचानते थे,
4: लोग उनको पहचानते थे। वो एक नाम था, जब उनको पता चलता था अच्छा मामा जी है तो ये पुष्कर भान जी है, वो था।
0: इसके साथ जुड़ा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा दीपक जी, कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कितना गहरा प्रभाव उनकी जिंदगी का आपके ऊपर है, जब आप उनके साथ जाते थे, जब आप वो वातावरण में लोगों के साथ बात करते हुए देखते थे, तो क्या पुष्कर भान जी ने लोगों पर भी ऐसा ही प्रभाव डाला था?
4: हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि लोगों पर एक ऐसा प्रभाव था कि जो लोग हैं उनको लगता था कि एक ऐसे माध्यम है, ये एक ऐसी आवाज है कि उनकी जो परेशानी हो, उनका कोई ऐसा काम जो कहीं हो नहीं रहा हो, सरकार से नहीं हो रहा हो चाहे पर्सनल नहीं हो रहा हो, कि ये मामा जी है जिसके थ्रू होगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि उस टाइम पे शायद मैं 4-5 साल का बच्चा नहीं समझ पा रहा था, पर बाद में जाके और अब जाके मैं उस चीज को जब रिलेट करता हूँ आज की टाइम से या जनरेशन से, तब मुझे लगता है कि वाकई में वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि मतलब जो उन्होंने छाप छोड़ी है, उसी छाप का ये असर है कि आज 100 साल के बाद भी चाहे उनकी जनरेशन हो या मेरी जनरेशन और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, उनको याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस लीजेंड की लीगेसी हमेशा आगे भी चलती रहे।
0: एक कलाकार, निर्देशक और प्रसारक के रूप में घर का माहौल में उनकी क्या भूमिका रहती थी, जैसे आपने अभी बात की
4: जी।
0: तो घर में क्या वो मचामा थे या एक साधारण से घर के बड़े व्यक्ति थे?
4: घर में एकदम मैं ये बोलूंगा कि उनका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट। कि रेडियो पे उनका जो किरदार, या जो मैं बाद में उनके कुछ नाटक सुनता था रेडियो के, तो मैं कहता था कैसे उसमें हंसा रहे हैं लोगों को, कैसी ऐसे आवाजें निकाल रहे हैं। और घर पे एकदम नॉर्मल रहते थे। इवन जैसे आप जूंडब भी अगर सुनेंगे तो जूंडब में जो उनका रोल है एक हाउस सर्वेंट का है
0: जी।
4: और वो थोड़ा तुतला के बोलते हैं।
0: ओके।
4: तो मैंने कहा ये तो घर पे तो ऐसा कभी नहीं बोलते और वहां पे ऐसा बोलते हैं।
0: ये उनकी कला थी।
4: मचामा में आप देखेंगे अलग अलग सी आवाजें निकालना, एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखेंगे, नोट करेंगे। उनकी एक डायरी होती थी साथ में, पेपर होता था, जहां उनको कुछ दिखे वो बस नोट कर देते थे और कहीं ना कहीं फिर उसको अपने वो रेडियो के प्रोग्राम में कहीं लाते थे। खासकर जैसे घर के कुछ कोई भी छोटी छोटी चीज हो, उस समय कोई इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अगर आप उनके प्रोग्राम में सुनेंगे, जैसे मचामा सीरीज है 60-70s की है, उसमें हेलीकॉप्टर की आवाज, एक दूसरी दुनिया में एलियन की आवाज, या कुछ वैसा स्पेस क्राफ्ट की आवाज निकालना, जो अवेलेबल चीजें होती थी उनसे बनाते थे। तो वो भी एक ऐसी कला है जो आजकल शायद अब टेक्नोलॉजी ने उस चीज को चेंज कर दिया।
0: जी सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप ये सामुदायिक रेडियो FM 90 रेडियो विस्तार सुन रहे हैं, इसको चलाने वाली संस्था है वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अम्बाला। हम भी थिएटर और मंच से जुड़े हैं। मैं बहुत अच्छी से समझ सकता हूं कि रेडियो जब नाटक हम तैयार करते हैं उसको एडिट करना कितना मुश्किल है। हम स्टेज पर जब नाटक करते हैं वो इतना मुश्किल दर्शाना नहीं है, जबकि रेडियो पर उसको एडिट करके तैयार करके आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जैसे अब तो हमारे पास इंटरनेट से सारी आवाजें मिलती, चाहे आपको गाड़ी की सायरन की आवाज मिले, चाहे आपको भैंस की आवाज मिले, चाहे कोई भी। पर उस जमाने में जैसे दीपक जी कह रहे हैं तो ये तो एक बहुत ही कला की बात थी। दीपक जी अब हम बात करते हैं कलात्मक योगदान और कश्मीर रेडियो की, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कश्मीरी कला, रंगमंच और रेडियो प्रसारण के स्वर्ण युग में आपके दादाजी का जो योगदान रहा उससे आप किस रूप में देखते हैं?
4: जितना उन्होंने, जैसा कि शुरू में भी बताया गया था कि एक ऐसी एक सन ऑफ सॉइल की उन्होंने जिंदगी जी है
0: जी।
4: जैसे कि आपको पता ही होगा जब वो शुरू में उन्होंने अपना रंगमंच या नाटक शुरू किया
0: जी,
4: वो बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में उनको जॉब मिली, वहां पे उनको थिएटर में चले गए, अपना इप्टा के उर्दू सेक्शन के सेक्रेटरी बने, हिंदी मूवी दरवाजा में उनको ऑफर मिला था, और भी बहुत सारे उस समय के जो कलाकार थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर जी, बलराज सहनी जी, सबके साथ उनको मौका मिला काम करने का
0: जी।
4: पर वो वापस अपना कश्मीर आए, श्रीनगर आए, और उनको लगा कि मेरी एक्चुअल जो मेरा काम है यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पे करना है। तो एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड को भी छोड़ के कश्मीर में आ जाए और उसके बाद एक रेडियो में रहे, रेडियो प्रोग्राम में रह के उन्होंने जो अपनी एक विरासत, अपनी एक धरोहर बनाई, वो एक ये है कि काबिले तारीफ तो है ही है, बट उतना आसान भी नहीं है। और साथ में उनके जो एक ड्रीम्स थे, बोलूंगा अगर, एक्टिंग के थे, वो भी उन्होंने साथ में कर लिया। उन्होंने जो मूवीज में काम किया, मंजरात में, शहर आजम कश्मीर महजूर में, और बहुत सारे स्टेज प्लेज, तो अपना उन्होंने वो भी साथ साथ में चलाते रहे। और अब पूरे 100 साल के योगदान में अगर हम उसको देखें, एक समरी के रूप में देखें, तो एक ऐसी चीज है कि उनका जो एक एम था कि सबको हंसाना है, जिंदगी एक ऐसी है कि हंसते हंसते ही निकलनी चाहिए
0: जी।
4: वो उनका मेन रहा था ह्यूमर, सटायर जो उन्होंने हर चीज में डाल के रखा था
0: जी। दीपक जी, रेडियो और थिएटर के प्रति उनके समर्पण का कोई ऐसा किस्सा जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है?
4: आजकल का ये कि आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास अब रिसोर्सेज हो गए हैं, पर यही मैं कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है
0: जी,
4: कि जिस चीज पे आप अड़े हैं, जो आपने करना उस पे करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको, उसका फल मिलेगा। जैसे पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा है
0: जी।
4: तो आजकल की जनरेशन चाहती है हमको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए, शॉर्टकट कैसे ले लें, जल्दी से जल्दी कैसे कामयाबी मिले, बट अगर उनका एग्जाम्पल देखा जाए, ये सारी चीजें टाइम लेती हैं, बट उसके बाद जो फल मिलेगा वो ऐसा मिठास देगा कि दुनिया याद रखेगी। और जैसे हम आज उनको याद कर रहे हैं, वैसे सब आपका काम कार्य कला सबको याद करते रहेंगे।
0: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को खास करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तरक्की और जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो क्या आप इससे सहमत हैं?
4: एकदम एकदम सहमत है।
0: अब हम बात करते हैं विरासत को जीवित रखने के प्रयास, खास करके ये दीपक जी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त है और उसके बावजूद भी आप अपने जो दादाजी की विरासत है, जो उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, आप उनके संपर्क में है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको आशीर्वाद भी देते होंगे, क्योंकि दीपक जी पुष्कर जी के पोते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दादाजी के नाम और उनके महान कलात्मक कार्यों को जीवित रखने के लिए आपने और आपके परिवार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए।
4: जैसा कि हम सबको पता है, एक 100th सेंटेनरी ईयर चल रहा है उनका
0: जी।
4: तो जो परिवार, एक जैसे मैं बताऊंगा दादाजी का जो परिवार, उनके एक बेटा जो मेरे पिताजी थे वो अभी रहे नहीं है, वो भी सर्वस हो गए हैं
0: जी।
4: और उनकी एक बेटी जो मेरी बुआ है वो दिल्ली में सेटल्ड है। तो ये उनका परिवार है। एंड उनके जो बच्चे, चाहे मेरी बुआ के बच्चे और मैं हो गया इस साइड से, मेरी मदर जो साथ में है मेरे, और जो अपना छोटा सा परिवार है। तो हमने डिसाइड किया इस साल में कि इस 100th सेंटेनरी ईयर को कैसे एक स्पेशल बनाया जाए
0: जी।
4: क्योंकि एक उनकी लीगेसी है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लीगेसी कहीं ख़त्म हो जाए, रुक जाए। आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत सारी मिसालें हैं इसमें। तो सारे परिवार ने फिर बोला कि इसको कुछ हमें ऐसा करना चाहिए इस साल में कि ये इनकी जो काम है इनके बारे में जो है, अभी तक तो सबको पता है पर आगे जाके कैसे पता रहे, उसके बारे में कुछ हमने सोचा। और टेक्नोलॉजी अब ऐसी है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उस पर इनके बारे में, इनके काम को डालेंगे, इनके बारे में डालने से वो चीज़ें एक डिजिटलाइज फॉर्मेट में भी रह रही हैं कि कल को अगर कोई दूसरी जनरेशन भी इनके बारे में जानना चाहे तो कहीं भी इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में निकल आएंगी जो अभी तक शायद नहीं थी। हालांकि वैसे भी बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी है इनके बारे में, बहुत लोगों ने लिखा है या आर्टिकल्स है, न्यूज़ आर्टिकल्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, बट फिर भी एक फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो शायद ओपन सोर्स में, ओपन इंटरनेट पे पता नहीं होता है
0: जी।
4: तो सारे मेरे जितने भी जो मेरी बुआ है, जो उनके मेरे उफा जी हो गए, मेरे कजन्स हो गए और मेरी वाइफ, बाकी बच्चे, सबका योगदान है, मदर का भी जितना उनके साथ रही हैं, तो इन सबके योगदान से इन्होंने, पूरे फैमिली मेम्बर्स ने एक उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें उनके जो है कार्य को दर्शाया जाता है। एंड वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं था इस बारे में, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर जगह से आ रही है और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी तक कि ये पूरा साल हम एक मना रहे हैं ईयर ऑफ सेंटेनरी फॉर द ट्रिब्यूट टू श्री पुष्कर भान जी।
0: यानी कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो उनके काम है, जो उन्होंने अपना योगदान अपने राज्य को, अपने देश को दिया है, आप चाहते हैं कि जितने भी युवा और बाकी लोग हैं उनको उनसे, उनके काम से प्रेरणा मिले।
4: जी एकदम।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उनके नाटकों, रेडियो स्क्रिप्ट्स या साहित्यिक कृतियों को सहजने और डिजिटल रूप में संरक्षित करने की कोई योजना बनाई गई है? क्या उनके जो लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स है, क्या आप लोगों ने उसको डिजिटल रूप में आपने तैयार करने की कोशिश की है या चल रही है?
4: इसमें जो है उनके जो पुराने स्क्रिप्ट्स थे, जैसा कि आपको पता है कश्मीर से निकलने के बाद जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उनकी थी, वो खत्म हो गई है क्योंकि वो मिल नहीं रही है, थोड़े से कुछ पीछे फ्लड्स में चले गए थे। तो किसी किसी के पास, जो हमारे साथ श्रोता जो जुड़ते रहते हैं, कहीं से सुनते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, जिनके पास कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं वो हमको भेज रहे हैं, वो अपलोड हो जाती हैं इंटरनेट पे भी और बाकियों को भेजा जाता है। एक तो वो तरीका उसको डिजिटाइज करने का रहा। उनके जो काम का था, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे थे, दुनिया भर के नाटक लिखे थे, प्रोग्राम लिखे थे, उसमें जो जो अवेलेबल है, हालांकि मैक्सिमम चीजें वो अपना उर्दू और कश्मीरी में लिखते थे एंड लिपि वो रहती थी उर्दू लिपि, तो हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखते थे। तो वो कुछ कुछ जो उनके नाटक है, कुछ जो उनके स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बार ट्रांसलेट भी करें हम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ उसको एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी करें, ताकि जो है पूरी सारे आवाम, सारी दुनिया उनको पढ़ सके,
0: उनके हाथ के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं वो भी पढ़ सके,
4: उनके हाथ के खुद के हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि उन्होंने 1950s और 60s में लिखे हैं। तो अभी तक वो एक रजिस्टर्स और फाइल्स प्रिजर्व करके हैं एंड उसको तो मैं ये बोलूंगा इट इज अ ट्रेजर, एक ऐसा ट्रेजर है वो, कि वो जब बाहर आके उनको लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक राइटर की उसमें फीलिंग्स, इमोशंस और कैसे करेक्टर को एक आगे बढ़ाते हैं।
0: जी, मैं इसके साथ आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, जब कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटाइज होता है तो वो हजारों साल के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी
4: सारी
0: वहां तक रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास किताब में या कॉपी में जो स्क्रिप्ट लिखा है वो कहीं पढ़ा नहीं जा सकता है, बट अगर वो डिजिटाइज रूप में जाता है तो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
4: जी,
0: इस कार्यक्रम के अंतिम रूप में कुछ और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर क्या कोई विशेष ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट्री, पुस्तक या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है?
4: जी, अभी तक जो प्लान है वो ये प्लान है कि 21 नवंबर को जम्मू में अभिनव थिएटर में उनका एक प्रोग्राम रखा जा रहा है
0: जी,
4: जो कि अपना जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर अकेडमी
0: की ओर से
4: भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में
0: जी,
4: एंड उसमें ये है कि उनके बारे में जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, कुछ पुराने आर्टिस्ट हैं वो उसमें शामिल होंगे, इनके जो काम है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कराया जाएगा और इनकी जीवनी पे एक बायोपिक मूवी भी बन रही है तो उसको भी शायद उसमें हम पेश करेंगे
0: जी,
4: तो ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े, मैक्सिमम लोगों के पास ये चीजें जाए, मैक्सिमम लोग इस चीजों को देखें और सबको ये जानकारी मिल जाए उनके बारे में।
0: दीपक जी, अगर कशिर पेट कात करो तो हिंदी दादाजी इंजन गरस मंस या पनन कम इस करा कशिर जबीन मंस कित कन करियो तो पनन दादाजी याद
4: अब हमारा दबो बस के तिमस एक हित शख्सियत के खली है गुदबे के नमन गए सासन इथे नफरन
0: जी
4: के वंशस बति हुन सो पूर कम उछान तीन रिकॉर्डिंग बोजान और चुमेंतन फिक्री की
0: जी हाँ श्रोताओं, मैं यहाँ पर रेडियो विदस्ता परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से इस महान व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाई जाए ताकि हमें उससे प्रेरणा मिल सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद भी हम उनके काम को देख रहे हैं, उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो जरूर था जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लाना चाहिए। आखिर में दीपक जी, मैं आपसे भावी पीढ़ी के लिए संदेश के रूप में आपसे जानना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के रेडियो कलाकारों, थिएटर निर्देशकों और प्रसारकों के लिए आप अपने दादाजी के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: उनके जो जीवन का पूरा एक संदेश ये है कि मेहनत का कोई और ऑप्शन या कोई और सेकंड शॉर्टकट नहीं है
0: जी,
4: मेहनत करनी है उसका सफल आपको मिलेगा और लोगों के लिए करना है, अपने लिए तो हम सब करते ही हैं
0: जी,
4: पर जहां पे हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों को जो पसंद है, चाहे उनकी समस्याएं हो, चाहे उनको हंसना हो, चाहे उनको भावुक होना हो
0: जी,
4: जब हम उनकी फीलिंग्स को समझ के उनके लिए कुछ करते हैं और उनके जो ब्लेसिंग्स होती हैं, शायद उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, बाकी अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं सबको, बट एक लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो कमा ली तो शायद
0: सबसे बेस्ट अवार्ड वही है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आज पहली बार आए
4: जी,
0: पहला दृश्य आपको यहाँ का कैसा लगा और आपको यहाँ आके कैसा लगा, हम ये जानना चाहेंगे।
4: मेरा ये पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी रेडियो स्टूडियो में खुद ऐसे आना, हालांकि देखा तो था मैं जब मैं जाता था अपने दादाजी के साथ भी
0: जी,
4: लेकिन आज एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस शख्सियत के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, रेडियो के महान कलाकार, और रेडियो से ही आज एक उनके बारे में एक ट्रिब्यूट जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, तो शायद इससे अच्छी और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है कि एक रेडियो पर्सनैलिटी के लिए रेडियो से उनके बारे में मैसेज जा रहा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि हम खुशनसीब है, रेडियो विदस्ता का पूरा परिवार, रेडियो विदस्ता की टीम, हम खुशनसीब है कि एक ऐसे रेडियो कलाकार की हम आज बात कर रहे हैं। शायद हमारा वजूद भी तभी हुआ है जब रेडियो एक जमाने में और आज भी प्रासंगिक है, और आज भी लोग अपनी जो एंटरटेनमेंट है उसको काम करते हुए रेडियो को सुनते रहते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हम गाड़ी में सफर कर रहे हो, और आज के जमाने का डिजिटल रेडियो है जो आप रेडियो पे तो सुनते ही हैं, साथ में आप इंटरनेट के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। खैर दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू भरत जी, एंड पूरी रेडियो विदस्ता टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।
5: आई एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भूषण लाल भान AVSM VSM फील ऑनर टू गिव माई तासुरात इम्प्रेशन अबाउट माई अंकल ने एल्डर ब्रदर whom I called Papa Ji. I spent my childhood to college days with him from the age of 8 years before I joined the Indian Air Force, as my parents had moved to Mumbai. Papa Ji, before joining the Radio Kashmir, went to Mumbai to stay with his elder brother, Pandit Dinanath Ban. Understandably, he established contact with Shri Raj Kapoor and Shri Raj Kapoor and gave some memorable performances and dramas and plays. He was also offered roles in movies, but Son of the Soil refused and instead preferred to return to his hometown, Srinagar. A turning point in the career came when he joined Radio Kashmir. His first broadcast, which to my in my memory showed, was titled Nizasab Kontakak, while he acted as Kontakak. The show brought to him to the notice of the public. I have a wealth of information about this extremely talented, noble, and great human being. Sufficient enough to write a book on his activities and achievements. May God Almighty bless this noble soul in Vaikunth. Kabhi kabhi aise didavar paida hote hain. और ना ही अपना बल्कि वतन का नाम भी रोशन करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: साहित्य और कला के क्षेत्र में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उनकी अद्वितीय कलात्मक देन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। पद्मश्री 1974। कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976। उनके महान साहित्य कार्य और नाटकों के लिए नीटा ICCE अवार्ड 1985। कला और प्रसारण में श्रेष्ठता के लिए सादिक मेमोरियल अवार्ड और इसके अलावा भी कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्रदान किए गए। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर भान जी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। रेडियो के अलावा उन्होंने अभिनय जगत में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। सुपरहिट कश्मीरी फिल्मों मजरात और शायरे कश्मीर महजूर में उनके अभिनय को आज भी शिद्दत से याद किया जाता है।
0: अक्टूबर 2008 में ये महान कलाकार इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी रेडियो के आर्काइव्स और देशवासियों और कश्मीरियों के दिलों में उनकी वो खनकती हुई आवाज गूंजती है। एक फनकार कभी नहीं मरता, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहता है। किसी शायर ने ऐसे ही महान फनकारों के लिए कहा है, आवाज मेरी मेरे बाद भी गूंजेगी फिजाओं में, मैं वो नगमा हूं जो कभी पुराना नहीं होता। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर बान जी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम विस्तृत कार्यक्रम इस महान व्यक्तित्व पर आपके समक्ष फिर लाएंगे। ऐसे ही किसी अन्य दिलचस्प दास्तान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे इजाजत।
1: मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, और अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे एक श्रद्धांजलि स्वरूप स्पेशल प्रोग्राम एट्रिब्यूट टू पद्मश्री श्री पुष्कर वांजी। प्रोग्राम प्रस्तुत किया भारत सोपोरी और अनु ने। विशेष धन्यवाद श्री दीपक बांजी का। सहयोग आरजे किरणी का। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو وتسلا ہم سفر زندگی ہوں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ताई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। अब न उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगा के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे मा। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

राम राम। जहां दूध दही का खाना योवा मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना योवा मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना योवा मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना योवा मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर 2:00 सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सिलसिला चाहतों का यूं ही चलता रहेगा, गीतों का ये मौसम हर पल बदलता रहेगा। जुड़ जाइए हमारे साथ इस रूहानी सफर में, क्योंकि दिलों से दिलों का रابطہ यही बनता रहेगा। नमस्कार और स्वागत, एक बहुत ही खूबसूरत गुनगुनाती शुक्रवार की दोपहर मुबारक हो आप सभी को। मैं हूं आपकी अपनी आरजे किरणी और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। शुक्रवार का दिन है यानी वीकेंड की दस्तक और हमारी आपकी मुलाकात की एक मीठी सी शुरुआत। और जब शुक्रवार आता है तो रेडियो वितस्ता पर एक अलग ही रौनक छा जाती है, क्योंकि आज वक्त है आपके सबसे चहेते शो का।
1: जी हाँ, यानी आपकी फरमाइश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अनु। किरणी जी, सच कहूँ तो पूरे हफ्ते हमें जिस पल का सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है वो यही शुक्रवार है। ये शो सिर्फ एक गानों की लिस्ट नहीं है, यहाँ हम आपकी फरमाइशों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को दिल से महसूस करते हैं। हफ्ते भर हम आपके भेजे हुए संदेशों और फरमाइशों का इंतजार करते हैं ताकि इस शो में उन्हें सिर्फ बजाया ना जाए बल्कि एक नया रूप दिया जा सके।
0: बिल्कुल सही कहा अनु आपने, यहाँ रेडियो वितस्ता पर हम आपकी भेजी हुई हर फरमाइश को केवल एक गाने के रूप में नहीं बजाते बल्कि आपकी उन खूबसूरत भावनाओं को, आपके उस प्यार को बहुत ही स्नेह और खुशनुमा अंदाज में बाकी सभी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आपके लिखे हर शब्द में एक अपनापन होता है, एक कहानी होती है जिसे हम इस माइक के जरिए सब तक फैलाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं।
1: और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि यह कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं है, यह पूरी तरह से आपका है, आपकी वजह से है और आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित है। आप हैं तो यह महफिल है, आपकी मोहब्बत है तो रेडियो दस्ता की यह धड़कन है। तो चलिए बातों के सिलसिले को यहीं थोड़ा विराम देते हैं और इस प्यार भरे सफर का आगाज करते हैं।
0: तो फिर देर किस बात की, दिल थाम कर बैठिए, अपनी चाय की चुस्कियां लीजिए और इस खुशनुमा माहौल में खो जाइए। अनु, आज के इस बेहद खास शो का आगाज करने के लिए सबसे पहली फरमाइश किसकी तरफ से आई है?
1: किरणी जी, आज हमारी सबसे पहली फरमाइश आई है बीडी फ्लोर मेल अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है आशु कोरी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म पति पत्नी और वो से गीत। गीत के बोल हैं लड़की साइकिल वाली। इस गीत को मधुर आवाज दी है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। आइए सुनते हैं इनका ये मनपसंद गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म प्यासा सावन से। गीत के बोल है मेघारे मेघारे मध्य प्रदेश जा रहे, और इस गाने की फरमाइश की है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश, सुनाते हैं आपको एक पंजाबी गीत। गीत के बोल हैं, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। इस गीत को आवाज दी है नुसरत फतेह अली खान साहब ने। इस गीत की फरमाइश आई है महेश नगर अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम। पेश है ये पंजाबी गीत।

हमारे पास अगली फरमाइश आई है कुमार हेड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है सैयद मसरूर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पत्थर के सनम का गीत, जिसके बोल हैं, महबूब मेरे तो है तो दुनिया कितनी हसी है। इस गाने को अपनी मधुर आवाज से सजाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। सईद मसरूर के साथ और सुनने वाले श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, अदीब, आफिया और सदाम। लीजिए पेश है इन सभी श्रोताओं का ये पसंदीदा नगमा।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से। भेजने वाले श्रोता हैं बंशीलाल संधु, कबीर सिंह संधु, जजबीर सिंह संधु, पवनीत कौर, वरनीत कौर और सारा संधु परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली से गीत। गीत के बोल हैं ये पर्दा हटा दो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: हटा दो।
1: लेते हैं अगला फरमाइशी गाना, जो है फिल्म सुनैना से, जिसके बोल है, इन बहारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। इस गाने को आवाज दी है यशोदास ने और ये फरमाइशी गाना हमारे पास आया है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता है गीता, किरण, डॉली, राहुल, मोहन, मंजू, न्याहा, मधु और संजीव। लीजिए पेश है इन सभी का ये फरमाइशी गाना।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बिन फेरे हम तेरे से गीत। गीत के बोल हैं दोस्त बनकर आए हो, दोस्त बनकर ही रहना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और उषा खन्ना जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव जगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है हरिंदीर बागड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म देश प्रेम का गाना। गाने के बोल है मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने और साथ ही में इन्होंने हमें इंडिपेंडेंस डे की विशेष भी भेजी है। हमारी तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये पेश है इनका पसंदीदा गीत।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अगर आप भी फरमाइश भेजना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं और हमारा नंबर है 7056413010। नंबर में एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा।
1: लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। गीत के बोल हैं, दिल की ये आरजू थी। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश आई है नेपाल से। भेजने वाली श्रोता है सोनी और इन्होंने भेजी है हमारे पास फरमाइश एक नेपाली सॉन्ग की जिसके बोल है साजन मोरी आएगी। लीजिए पेश है ये फरमाइशी गीत।

बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your

0: आपने ट्यून किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और आपके साथ मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज इस खास प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे,
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कश्मीर की उस अजीम शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज, अपने अभिनय और अपनी कलम से कश्मीरी कला, नाटक और प्रसारण जगत को एक नया मुकाम दिया। बात हो रही है महान कलाकार, प्रसारक, अभिनेता और निर्देशक आदरणीय पुष्कर बान जी की। कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा बाशिंदा होगा जो उन्हें नाम से, उनके काम से या उनके घड़े हुए किरदारों से ना जानता हो। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से रेडियो और अभिनय के क्षेत्र में जो छाप छोड़ी वो अद्वितीय है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भरत जी। पुष्कर भान जी का जन्म 26 अगस्त 1926 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। कला और रंगमंच के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही गहरा था। 1952 में जब वे रेडियो कश्मीर श्रीनगर से बतौर कलाकार और नाटककार जुड़े तो उन्होंने प्रसारण की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी एक मिसाल है। पुष्कर जी सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं थे, बल्कि वे कश्मीर के आम आदमी के दर्द, खुशी और उनके सरोकारों की आवाज थे। क्या आप जानते हैं कि पुष्कर भान जी का सफर कैसे शुरू हुआ था? साल 1952 में महज 2.5 रुपए के दैनिक वेतन से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी बेमिसाल लेखन शैली और अदायगी के दम पर उन्होंने जल्द ही हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। 2.5 रुपए, सोचिए, इतनी छोटी शुरुआत से एक इंसान ने इतना बड़ा सफर तय किया। लेकिन उनके अच्छे लेखन और अभिनय की उम्दा प्रस्तुति ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाना शुरू कर दी।
0: अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वे बेहद जमीन से जुड़े हुए, सरल और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका हास्य और व्यंग, ह्यूमर एंड स्टायर। समाज की कुरीतियों, भ्रष्टाचार और रोजमर्रा की दिक्कतों

0: पर वे अपने नाटकों के जरिए ऐसी मीठी और तीखी चोट करते थे कि श्रोता हंसते हंसते बहुत गहरी बात समझ जाते थे। उनका अंदाज इतना अपनापन लिए होता था कि जब वे रेडियो पर बोलते तो लगता था जैसे घर का ही कोई बुजुर्ग दलान में बैठकर आपसे बतिया रहा हो।
1: नमस्कार, आई एम विनायक राजदान। आई वॉज बॉर्न इन द 1980s। टू लेट टू हैव हर्ड पुष्कर बान लाइव ऑन द रेडियो। मचामा हैड ऑलरेडी एंटर्ड द कश्मीरी सोल लॉन्ग बिफोर आई कुड अंडरस्टैंड इट। सो आई डोंट प्रिटेंड टू स्पीक एज अ विटनेस टू हिज गोल्डन एरा। I can only speak as someone who found his work much later and was moved enough to want to preserve it. At Search Kashmir, we have archived pieces like Sindbad Machama along with its script and some of his television and radio interviews and documentaries, all generously shared by his own family. And that to me is where his greatness truly lies. Because his work does not need its audience to be present. It survives, it waits, it finds new listeners across time, people like me born decades later, who can still laugh at Machama and still learn Kashmiri from his satire. That is Pushkar Ban's rare legacy. My humble salute to a voice that refuses to fade. Thank you.
0: आइए अब बात करते हैं उनके किरदारों और प्रस्तुतियों की। अभिनय और लेखन के मोर्चे पर उनका गढ़ा और जिया हुआ किरदार मचामा कश्मीरी साहित्य और रेडियो के इतिहास में अमर है। मचामा सीरीज, हीरो मचामा, सिंधबाद मचामा के नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि लोग अपने सारे काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाते थे। इसके अलावा उनका और सोमनाथ साधु जी का लिखा और प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक रेडियो फीचर जून डब लगभग 19 सालों तक बिना थमे चला। झुंडब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि कश्मीरी परिवारों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया था, जिसने सामाजिक जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। झुंडब केवल एक रेडियो शो नहीं बल्कि कश्मीरी समाज का आईना भी था। पुष्कर बान जी के कुशल निर्देशन और अभिनय के साथ ये कार्यक्रम बिना रुकावट लगातार बहुत सालों तक चलता रहा। ये अपने आप में एक मिसाल है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, जब हम बहुत छोटे थे तब से हम इस कार्यक्रम को रेडियो कश्मीर श्रीनगर पर सुना करते थे। छोटे होते हुए हमें ये पता नहीं चलता था कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, पर ये पता था कि ये एक ऐसा फीचर है जो हर दिन रेडियो कश्मीर श्रीनगर पर आता था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज इस महान व्यक्ति के 100वें जन्म दिवस पर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ।
2: Some voices never vanish. They become the heartbeat of generations. Shri Pushkar Ban, the golden voice of Kashmir, a recipient of the Padma Shri and the Sahitya Akademi Award. He enriched generations through his unforgettable performances. Through beloved characters like Zundab and Machama, he brought joy, warmth, and the spirit of Kashmir into countless homes. His voice still echoes. His legacy continues to inspire. Join his legacy.
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। 26 अगस्त 2026 का दिन कश्मीरी कला, संस्कृति और रेडियो प्रसारण के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। आज हम कश्मीर के महान प्रसारक कुशल अभिनेता और निर्देशक की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी समृद्ध विरासत, रेडियो और रंगमंच के उस दौर की यादें और इस अमर नाम को जीवित रखने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आपके साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय पुष्कर बान जी की, जो रेडियो, कला और थिएटर में एक बहुत बड़ा नाम है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पोते श्री दीपक बान जी। आइए उनसे करते हैं बात, जानते हैं इस लेजेंड के बारे में। तो श्रोताओं, आइए आप सभी को मैं रूबरू करता हूं आज के हमारे आमंत्रित मेहमान श्री दीपक बान जी के साथ। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में।
3: नमस्कार, थैंक यू भरत जी, ये बहुत ही एक प्रिविलेज है मेरे लिए बहुत हमारे यहाँ पे आना, खासकर उस मौके पर जहाँ पे कि मेरे दादाजी जो श्री पुष्कर बान जी हैं, उनका एक 100th बर्थडे सेंटिनरी सेलिब्रेशन ईयर हम मना रहे हैं। मैं उनका पोता दीपक बान, और आजकल जो है हम लोग जम्मू में सेटल्ड हैं। उनके बारे में जो भी पता है मुझे, जो देखा है, गर्व महसूस किया है, एक माहौल जो बना था उनके साथ, तो उस पर आज मैं जो भी चर्चा हो सकती है उस विषय पर मैं बताऊंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मैं भी खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे लेजेंड की हम आज बात करने जा रहे हैं, उनको और नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे, जिनको हमने बचपन से रेडियो कश्मीर श्रीनगर से सुना है। कई सारे किरदार, कई सारे प्रोग्राम्स, और जिन प्रोग्राम्स ने हमारी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं दीपक जी से महान व्यक्तित्व के बारे में। दीपक जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, मैं और हमारे सारे श्रोता इस महान व्यक्तित्व श्री पुष्कर बान जी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विरासत और यादों के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे हम 100वीं जयंती के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर आप अपने दादाजी को याद करते हुए आज आपको कैसा महसूस हो रहा है?
3: जी, मैं तो ये भूलूंगा कि ये कैसे गर्व की बात है, ये कैसी फीलिंग है जो कि शायद शब्दों में बयान ना हो सके, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में भी बताया, वो एक सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे लीजेंड रह चुके हैं कश्मीर के जी, कि शायद ही जिनके बारे में जितना बोले उतना कम है जी। बट मैंने जो उनको देखा है वो उस मौके, उस मुकाम के बाद से देखा है जब वो एक अपने पीक पे सारी चीजें हासिल कर चुके हैं, और तब भी उस इंसान में जो है एक जो रहता है अपना काम करने का जुनून, और लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी समस्याएं हो चाहे उनको हंसाना हो, वो चीजें कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। मेरा जन्म तब हुआ था जब उनको ऑलरेडी पद्मश्री मिला था, जब उनको ऑलरेडी साहित्य अकेडमी मिला था, जब उनका मचामा जूंडब ऑलरेडी पीक पर सब जा चुका था जी। तो उसके बाद से जो मैंने उनको देखा है, और जो उनके बारे में घर में जितना हम सुनते थे और जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन है, मैं तो यही बोलूंगा कि इट इज नॉट लेस देन ऑनर कि उनके बारे में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ आज, और ऐसा ओकेजन है कि अगर वो आज होते हमारे बीच तो 26 अगस्त आज उनका एक 100th बर्थडे होता
0: जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आज उनका 100वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं, और हमारे लिए और रेडियो वितस्ता के लिए और रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है। इस दिवस पर हम आपसे बात कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन की कोई ऐसी खास याद जो आज भी आपके दिल के करीब हो, जिसने आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला हो।
3: बचपन में ऐसा था, जब भी उनका काम होता था, वो बहुत सारे जूंडब और बाकी चीज़ों के अलावा रेडियो में बहुत सारे और प्रोग्राम भी करते रहते थे, और ग्रास रूट लेवल से जुड़ते थे वो। उनका था कि अगर कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम हाईलाइट करना है, या किसी की समस्या है, किसी गांव की हो चाहे इंसान की हो, वो उस जगह पे जाते थे, वो उनकी खास बात थी
0: जी।
3: तो कभी कभी वो रिकॉर्डिंग के लिए निकलते थे, दूर दराज के गाँव में जाते थे, तो मेरे को साथ लेके जाते थे, कहते थे आ जाओ घूमने चलते हैं। तो उस टाइम पर एक जीप होती थी, एक रेडियो, उनके पास टेप रिकॉर्डर रहता था साथ में, और मैं भी छोटा सा 4-5 साल का लड़का साथ में निकल जाता था उनके। मेरे लिए तो एक दादाजी थे जिनको मैं पापा जी बुलाता था, पर जब भी मैं उनके पास जहां भी जाता था वहां पे, उस समय शायद मुझे वो रियलाइज नहीं होता था कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे
0: जी।
3: कहीं भी गए, किसी गांव में जाते थे या किसी प्रोग्राम में गए, या छोटी सी चीज है कहीं सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, तो एक ऐसा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, एक ऐसा वेलकम सा उनको मिलता था, कि जब मैं आज देखता हूँ तो लगता था कि बहुत ही एक वीवीआईपी टाइप की पर्सनैलिटी थी
0: जी।
3: पर मेरे घर में रहना उनका जो एक था एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा, और कभी वो फीलिंग तब नहीं आई। तो ये उनकी जो चीजें हैं जब मैं आज देखूं, याद करूं, तब मुझे एहसास होता है कि उनका काम था ये जिसने उनकी ऐसी एक पहचान बनाई। और उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं, कोई उतना टेलीविजन नहीं था कि लोग जाने,
0: सोशल मीडिया नहीं था,
3: सिर्फ एक आवाज और एक रेडियो
0: जी।
3: उस किरदार से वो जाने जाते थे
0: जी।
3: एंड जूंडम में अगर उनका जो किरदार था मामा पिपजी का या मचामा का, तो एक लोकल पॉपुलेशन को उसी से पता था कि अच्छा मामा जी आ गए। ये नहीं पता था कि ये पुष्कर भान कौन चेहरा है उसके पीछे,
0: यानी कि किरदार से लोग उनको पहचानते थे।
3: वो एक नाम था, जब उनको पता चलता था अच्छा मामा जी है तो ये पुष्कर भान जी है, वो था।
0: इसके साथ जुड़ा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा दीपक जी, कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कितना गहरा प्रभाव उनकी जिंदगी का आपके ऊपर है, जब आप उनके साथ जाते थे, जब आप वो वातावरण में लोगों के साथ बात करते हुए देखते थे, तो क्या पुष्कर भान जी ने लोगों पर भी ऐसा ही प्रभाव डाला था?
3: हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि लोगों पर एक ऐसा प्रभाव था कि जो लोग हैं उनको लगता था कि एक ऐसे माध्यम है, ये एक ऐसी आवाज है कि उनकी जो परेशानी हो, उनका कोई ऐसा काम जो कहीं हो नहीं रहा हो, सरकार से नहीं हो रहा हो, चाहे पर्सनल नहीं हो रहा हो, कि ये मामा जी है जिसके थ्रू होगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि उस टाइम पे शायद मैं 4-5 साल का बच्चा नहीं समझ पा रहा था, पर बाद में जाके और अब जाके मैं उस चीज को जब रिलेट करता हूँ आज की टाइम से या जनरेशन से, तब मुझे लगता है कि वाकई में वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि मतलब जो उन्होंने छाप छोड़ी है, उसी छाप का ये असर है कि आज 100 साल के बाद भी चाहे उनकी जनरेशन हो या मेरी जनरेशन और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, उनको याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस लीजेंड की लीगेसी हमेशा आगे भी चलती रहे।
0: एक कलाकार, निर्देशक और प्रसारक के रूप में घर का माहौल में उनकी क्या भूमिका रहती थी? जैसे आपने अभी बात की
3: जी,
0: तो घर में क्या वो मचामा थे या एक साधारण से घर के बड़े व्यक्ति थे?
3: घर में एकदम मैं ये बोलूंगा कि उनका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट। कि रेडियो पे उनका जो किरदार, या जो मैं बाद में उनके कुछ नाटक सुनता था रेडियो के, तो मैं कहता था कैसे उसमें हंसा रहे हैं लोगों को, कैसी ऐसे आवाजें निकाल रहे हैं, और घर पे एकदम नॉर्मल रहते थे। इवन जैसे आप जूंडब भी अगर सुनेंगे तो जूंडब में जो उनका रोल है एक हाउस सर्वेंट का है
0: जी।
3: और वो थोड़ा तुतला के बोलते हैं
0: ओके।
3: तो मैंने कहा ये तो घर पे तो ऐसा कभी नहीं बोलते और वहां पे ऐसा बोलते हैं,
0: ये उनकी कला थी।
3: मचामा में आप देखेंगे अलग अलग सी आवाजें निकालना, एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखेंगे, नोट करेंगे। उनकी एक डायरी होती थी साथ में, पेपर होता था, जहां उनको कुछ दिखे वो बस नोट कर देते थे और कहीं ना कहीं फिर उसको अपने वो रेडियो के प्रोग्राम में कहीं लाते थे। खासकर जैसे घर के कुछ कोई भी छोटी छोटी चीज हो, उस समय कोई इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अगर आप उनके प्रोग्राम में सुनेंगे, जैसे मचामा सीरीज है 60-70s की है, उसमें हेलीकॉप्टर की आवाज, एक दूसरी दुनिया में एलियन की आवाज, या कुछ वैसा स्पेस क्राफ्ट की आवाज निकालना, जो अवेलेबल चीजें होती थी उनसे बनाते थे। तो वो भी एक ऐसी कला है जो आजकल शायद अब टेक्नोलॉजी ने उस चीज को चेंज कर दिया।
0: जी सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप ये सामुदायिक रेडियो FM 90 रेडियो विस्तार सुन रहे हैं, इसको चलाने वाली संस्था है वह थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला। हम भी थिएटर और मंच से जुड़े हैं। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि रेडियो जब नाटक हम तैयार करते हैं उसको एडिट करना कितना मुश्किल है, हम स्टेज पर जब नाटक करते हैं वो इतना मुश्किल दर्शाना नहीं है, जबकि रेडियो पर उसको एडिट करके तैयार करके आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जैसे अब तो हमारे पास इंटरनेट से सारी आवाजें मिलती, चाहे आपको गाड़ी की सायरन की आवाज मिले, चाहे आपको भैंस की आवाज मिले, चाहे कोई भी, पर उस जमाने में जैसे दीपक जी कह रहे हैं तो ये तो एक बहुत ही कला की बात थी। दीपक जी अब हम बात करते हैं कलात्मक योगदान और कश्मीर रेडियो की, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कश्मीरी कला, रंगमंच और रेडियो प्रसारण के स्वर्ण युग में आपके दादाजी का जो योगदान रहा, उससे आप किस रूप में देखते हैं?
3: जितना उन्होंने, जैसा कि शुरू में भी बताया गया था कि एक ऐसी एक सन ऑफ सॉइल की उन्होंने जिंदगी जी है
0: जी।
3: जैसे कि आपको पता ही होगा जब वो शुरू में उन्होंने अपना रंगमंच या नाटक शुरू किया
0: जी,
3: वो बॉम्बे चले गए थे, बॉम्बे में उनको जॉब मिली, वहां पे उनको थिएटर में चले गए, अपना इप्टा के उर्दू सेक्शन के सेक्रेटरी बने, हिंदी मूवी दरवाजा में उनको ऑफर मिला था, और भी बहुत सारे उस समय के जो कलाकार थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर जी, बलराज सहनी जी, सबके साथ उनको मौका मिला काम करने का। पर वो वापस अपना कश्मीर आए, श्रीनगर आए, और उनको लगा कि मेरी एक्चुअल जो मेरा काम है यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पे करना है। तो एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड को भी छोड़ के कश्मीर में आ जाए, और उसके बाद एक रेडियो में रहे, रेडियो प्रोग्राम में रह के उन्होंने जो अपनी एक विरासत, अपनी एक धरोहर बनाई, वो एक ये है कि काबिल तारीफ तो है ही है, बट उतना आसान भी नहीं है। और साथ में उनके जो एक ड्रीम्स थे, बोलूँगा अगर, एक्टिंग के थे, वो भी उन्होंने साथ में कर लिया। उन्होंने जो मूवीज में काम किया, मोइंजरात में, शहर आजम कश्मीर महजूर में, और बहुत सारे स्टेज प्लेस, तो अपना उन्होंने वो भी साथ साथ में चलाते रहे। और अब पूरे 100 साल के योगदान में अगर हम उसको देखें, एक समरी के रूप में देखें, तो एक ऐसी चीज है कि उनका जो एक एम था कि सबको हंसाना है, जिंदगी एक ऐसी है कि हंसते हंसते ही निकलनी चाहिए
0: जी।
3: वो उनका मेन रहा था, ह्यूमर सटायर जो उन्होंने हर चीज में डाल के रखा था
0: जी। दीपक जी, रेडियो और थिएटर के प्रति उनके समर्पण का कोई ऐसा किस्सा जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है?
3: आजकल का यह कि आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास अब रिसोर्सेज हो गए हैं, पर यही मैं कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है
0: जी,
3: कि जिस चीज पे आप अड़े हैं, जो आपने करना उस पे करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको, उसका फल मिलेगा। जैसे पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा है
0: जी।
3: तो आजकल की जनरेशन चाहती है हमको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए, शॉर्टकट कैसे ले लें, जल्दी से जल्दी कैसे कामयाबी मिले, बट अगर उनका एग्जाम्पल देखा जाए, ये सारी चीजें टाइम लेती हैं, बट उसके बाद जो फल मिलेगा वो ऐसा मिठास देगा कि दुनिया याद रखेगी। और जैसे हम आज उनको याद कर रहे हैं, वैसे सब आपका काम, कार्य, कला सबको याद करते रहेंगे।
0: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को खास करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तरक्की और जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो क्या आप इससे सहमत हैं?
3: एकदम सहमत है।
0: अब हम बात करते हैं विरासत को जीवित रखने के प्रयास, खास करके ये दीपक जी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त है, और उसके बावजूद भी आप अपने जो दादाजी की विरासत है, जो उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, आप उनके संपर्क में है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको आशीर्वाद भी देते होंगे, क्योंकि दीपक जी पुष्कर जी के होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दादाजी के नाम और उनके महान कलात्मक कार्यों को जीवित रखने के लिए आपने और आपके परिवार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए?
3: जैसा कि हम सबको पता है, एक 100th सेंटेनरी ईयर चल रहा है उनका
0: जी।
3: तो जो परिवार, एक जैसे मैं बताऊंगा, दादाजी का जो परिवार, उनके एक बेटा जो मेरे पिताजी थे वो अभी रहे नहीं है, वो सर्वास हो गए हैं, और उनकी एक बेटी जो मेरी बुआ है वो दिल्ली में सेटल्ड है, तो ये उनका परिवार है। एंड उनके जो बच्चे, चाहे मेरी बुआ के बच्चे और मैं हो गया इस साइड से, मेरी मदर जो साथ में है मेरे, और जो अपना छोटा सा परिवार है, तो हमने डिसाइड किया इस साल में कि इस 100th सेंटेनरी ईयर को कैसे एक स्पेशल बनाया जाए
0: जी।
3: क्योंकि एक उनकी लीगेसी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लीगेसी कहीं खत्म हो जाए, रुक जाए, आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत सारी मिसालें हैं इसमें। तो सारे परिवार ने फिर बोला कि इसको कुछ हमें ऐसा करना चाहिए इस साल में कि ये इनकी जो काम है, इनके बारे में जो है, अभी तक तो सबको पता है, पर आगे जाके कैसे पता रहे, उसके बारे में कुछ हमने सोचा। और टेक्नोलॉजी अब ऐसी है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उस पे इनके बारे में, इनके काम को डालेंगे, इनके बारे में डालने से वो चीजें एक डिजिटलाइज फॉर्मेट में भी रह रही हैं, कि कल को अगर कोई दूसरी जनरेशन भी इनके बारे में जानना चाहे, तो कहीं भी इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में निकल आएंगी जो अभी तक शायद नहीं थी। हालांकि वैसे भी बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी है इनके बारे में, बहुत लोगों ने लिखा है, या आर्टिकल्स है, न्यूज़ आर्टिकल्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, बट फिर भी एक फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद ओपन सोर्स में, ओपन इंटरनेट पे पता नहीं होता है
0: जी।
3: तो सारे मेरे जितने भी जो मेरी बुआ है, जो उनके मेरे उफा जी हो गए, मेरे कजन्स हो गए, और मेरी वाइफ, बाकी बच्चे, सबका योगदान है, मदर का भी जितना उनके साथ रही है, तो इन सबके योगदान से इन्होंने, पूरे फैमिली मेंबर्स ने, एक उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें उनके जो है कार्य को दर्शाया जाता है। एंड वहां से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं था इस बारे में, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर जगह से आ रही है और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी तक कि ये पूरा साल हम एक मना रहे हैं ईयर ऑफ सेंटिनरी फॉर द ट्रिब्यूट टू श्री पुष्कर पाल जी।
0: यानी कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो उनके काम है, जो उन्होंने अपना योगदान अपने राज्य को अपने देश को दिया है, आप चाहते हैं कि जितने भी युवा और बाकी लोग हैं उनको उनसे उनके काम से प्रेरणा मिले।
3: जी एकदम।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उनके नाटकों, रेडियो स्क्रिप्ट्स या साहित्यिक कृतियों को सहजने और डिजिटल रूप में संरक्षित करने की कोई योजना बनाई गई है? क्या उनके जो लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स है, क्या आप लोगों ने उसको डिजिटल रूप में आपने तैयार करने की कोशिश की है या चल रही है?
3: इसमें जो है उनके जो पुराने स्क्रिप्ट्स थे, जैसा कि आपको बताया कश्मीर से निकलने के बाद जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उनकी थी ज़ोंडा की, मचान वो खत्म हो गई है क्योंकि वो मिल नहीं रही है, थोड़ी से कुछ पीछे फ्लड्स में चले गए थे। तो किसी किसी के पास जो हमारे साथ श्रोता जो जुड़ते रहते हैं कहीं से सुनते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, जिनके पास कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं उनको भेज रहे हैं, वो अपलोड हो जाती हैं इंटरनेट पे भी और बाकियों को भेजा जाता है। एक तो वो तरीका है उसको डिजिटाइज करने का, रहा उनके जो काम का था, जो स्क्रिप्ट्स लिखे थे, दुनिया भर के नाटक लिखे थे, प्रोग्राम लिखे थे, उसमें जो जो अवेलेबल है, हालांकि मैक्सिमम चीजें वो अपना उर्दू और कश्मीरी में लिखते थे एंड लिपि वो रहती थी उर्दू लिपि, तो हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखते थे। तो वो कुछ कुछ जो उनके नाटक है, कुछ जो उनके स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बार ट्रांसलेट भी करें हम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ उसको एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी करें, ताकि जो है पूरी सारे आवाम, सारी दुनिया उनको पढ़ सके,
0: उनके हाथ के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स है वो भी पढ़ सके,
3: उनके हाथ के खुद के हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि उन्होंने 1950s और 60s में लिखे हैं, तो अभी तक वो एक रजिस्टर्स और फाइल्स प्रिजर्व करके हैं एंड उसको तो मैं ये बोलूंगा इट इज अ ट्रेजर, एक ऐसा एक ट्रेजर है वो कि वो जब बाहर आके उनको लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक राइटर की उसमें फीलिंग्स, इमोशंस और कैसे करेक्टर को एक आगे बढ़ाते हैं।
0: जी, मैं इसके साथ आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, जब कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटाइज होता है तो वो हजारों साल के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी
3: सारी
0: वहां तक रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास किताब में या कॉपी में जो स्क्रिप्ट लिखा है वो कहीं पढ़ा नहीं जा सकता है, बट अगर वो डिजिटाइज रूप में जाता है तो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
3: जी,
0: इस कार्यक्रम के अंतिम रूप में कुछ और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर क्या कोई विशेष ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट्री, पुस्तक या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है?
3: जी, अभी तक जो प्लान है वो ये प्लान है कि 21 नवंबर को जम्मू में अभिनव थिएटर में उनका एक प्रोग्राम रखा जा रहा है
0: जी,
3: जो कि अपना जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर अकेडमी
0: की ओर से
3: भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में
0: जी,
3: एंड उसमें ये है कि उनके बारे में जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, कुछ पुराने आर्टिस्ट हैं वो उसमें शामिल होंगे, इनके जो काम है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कराया जाएगा और इनकी जीवनी पे एक बायोपिक मूवी भी बन रही है तो उसको भी शायद उसमें हम पेश करेंगे
0: जी,
3: तो ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े, मैक्सिमम लोगों के पास ये चीजें जाए, मैक्सिमम लोग इस चीजों को देखें और सबको ये जानकारी मिल जाए उनके बारे में।
0: दीपक जी, अगर कशिर पेट कत करो तो हिंदे दादाजी यम जन घरस मन या पनन कम इस करा कशिर जबैन मस कित कन करियो तो पनन दादाजी याद
3: बमरा दबो बस के तमस एक हित शख्सियत के खली है को दबे के नमन गए सासन इथे नफरन
0: जी
3: के वंशस बत हुन सु पूर कम छान तीन रिकॉर्डिंग बोजान और चुमंतन फिक्री की
0: जी हाँ श्रोताओं, मैं यहाँ पर रेडियो विदस्ता परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से इस महान व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाई जाए ताकि हमें उससे प्रेरणा मिल सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद भी हम उनके काम को देख रहे हैं, उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो जरूर था जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लाना चाहिए। आखिर में दीपक जी, मैं आपसे भावी पीढ़ी के लिए संदेश के रूप में आपसे जानना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के रेडियो कलाकारों, थिएटर निर्देशकों और प्रसारकों के लिए आप अपने दादाजी के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: उनके जो जीवन का पूरा एक संदेश ये है कि मेहनत का कोई और ऑप्शन या कोई और सेकंड शॉर्टकट नहीं है
0: जी,
3: मेहनत करनी है उसका सफल आपको मिलेगा, और लोगों के लिए करना है, अपने लिए तो हम सब करते ही हैं पर जहां पे हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों को जो पसंद है, चाहे उनकी समस्याएं हो, चाहे उनको हंसना हो, चाहे उनको भावुक होना हो, जब हम उनकी फीलिंग्स को समझ के उनके लिए कुछ करते हैं और उनके जो ब्लेसिंग्स होती हैं, शायद उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। बाकी अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं सबको, बट एक लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो कमा ली तो शायद
0: सबसे बेस्ट अवार्ड वही है। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आज पहली बार आए
3: जी,
0: पहला दृश्य आपको यहाँ का कैसा लगा और आपको यहाँ आके कैसा लगा, हम ये जानना चाहेंगे।
3: मेरा ये पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी रेडियो स्टूडियो में खुद ऐसे आना, हालांकि देखा तो था मैं जब मैं जाता था अपने दादाजी के साथ भी
0: जी,
3: लेकिन आज एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक उस शख्सियत के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, रेडियो के महान कलाकार, और रेडियो से ही आज एक उनके बारे में एक ट्रिब्यूट जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, तो शायद इससे अच्छी और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है कि एक रेडियो पर्सनैलिटी के लिए रेडियो से उनके बारे में मैसेज जा रहा है।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि हम खुशनसीब है, रेडियो विदस्ता का पूरा परिवार, रेडियो विदस्ता की टीम, हम खुशनसीब है कि एक ऐसे रेडियो कलाकार की हम आज बात कर रहे हैं। शायद हमारा वजूद भी तभी हुआ है जब रेडियो एक जमाने में और आज भी प्रासंगिक है, और आज भी लोग अपनी जो एंटरटेनमेंट है उसको काम करते हुए रेडियो को सुनते रहते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हम गाड़ी में सफर कर रहे हो, और आज के जमाने का डिजिटल रेडियो है जो आप रेडियो पे तो सुनते ही हैं, साथ में आप इंटरनेट के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। खैर दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू भरत जी, एंड पूरी रेडियो विदस्ता टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि जिनकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: नमस्कार। आई एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भूषण लाल भाम AVSM VSM फील ऑनर्ड टू गिव माय तासुरात इम्प्रेशन अबाउट माय अंकल ने एल्डर ब्रदर हुम आई कॉल्ड पापा जी। I spent my childhood to college days with him from the age of 8 years before I joined the Indian Air Force, as my parents had moved to Mumbai. Papaji, before joining the Radio Kashmir, went to Mumbai to stay with his elder brother, Pandit Dinanath Ban. Understandably, he established contact with Shri Prithvi Raj Kapoor and Shri Raj Kapoor and gave some memorable performances and dramas and plays. He was also offered roles in movies, but Sanatan Soil refused, instead preferred to return to his hometown, Srinagar. A turning point in the career came when he joined Radio Kashmir. His first broadcast, which to my in my memory showed, was titled Nizasab Kontakak, while he acted as Kontakak. The show brought to him to the notice of the public. I have a wealth of information about this extremely talented, noble, and great human being. Sufficient enough to write a book on his activities and achievements. May God Almighty bless this noble soul in Vaikunth. Kabhi kabhi aise didavar paida hote hain, aur na hi apna बल्कि वतन का नाम भी रोशन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
5: साहित्य और कला के क्षेत्र में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उनकी अद्वितीय कलात्मक देन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। पद्मश्री 1974, कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 उनके महान साहित्य कार्य और नाटकों के लिए। नीटा ICCE अवार्ड 1985 कला और प्रसारण में श्रेष्ठता के लिए। सादिक मेमोरियल अवार्ड और इसके अलावा भी कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्रदान किए गए। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर भानजी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। रेडियो के अलावा उन्होंने अभिनय जगत में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। सुपरहिट कश्मीरी फिल्मों मजरात और शायरे कश्मीर महजूर में उनके अभिनय को आज भी शिद्दत से याद किया जाता है।
0: अक्टूबर 2008 में ये महान कलाकार इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी रेडियो के आर्काइव्स और देशवासियों और कश्मीरियों के दिलों में उनकी वो खनकती हुई आवाज गूंजती है। एक फनकार कभी नहीं मरता, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहता है। किसी शायर ने ऐसे ही महान फनकारों के लिए कहा है, आवाज मेरी मेरे बाद भी गूंजेगी फिजाओं में, मैं वो नगमा हूं जो कभी पुराना नहीं होता। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर भानजी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम विस्तृत कार्यक्रम इस महान व्यक्तित्व पर आपके समक्ष फिर लाएंगे। ऐसी ही किसी अन्य दिलचस्प दास्तान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे इजाजत।
5: मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, और अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे एक श्रद्धांजलि स्वरूप स्पेशल प्रोग्राम एट्रिब्यूट टू पद्मश्री श्री पुष्कर वांजी। प्रोग्राम प्रस्तुत किया भारत सोपोरी और अनु ने। विशेष धन्यवाद श्री दीपक बांजी का। सहयोग आरजे किरणी का। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना।

प्रस्तुत है कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2, सहयोग कृष्णा, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुत करता नैना, निर्देशन भारत सोपोरी।

अक्सर जब हम किसी सफल महिला को देखते हैं, तो हम उसकी चमक देखते हैं, उसकी कामयाबी की तालियां सुनते हैं। लेकिन उस चमक के पीछे कितने अंधेरे रास्तों से वो गुजरी है, कितनी रातों की नींद उसने कुर्बान की है, ये शायद ही कोई देख पाता है। संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, संघर्ष तो वो मिट्टी है जिसमें तपकर एक आम लड़की शक्ति का बनती है। चाहे वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे परिवार को संभालने वाली हमारी गृहिणी हो, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के कैबिन में बैठकर बड़े फैसले लेने वाली कोई लीडर। संघर्ष दोनों का है, बस रूप अलग है। चलिए इस खूबसूरत सी बात के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक बेहद प्यारे और मोटिवेशनल गाने के साथ। आप सुनिए यह गीत, मैं मिलती हूँ आपसे इसी मोड़ पर।

वेलकम बैक दोस्तों, 90.0 FM रेडियो वितस्ता पर आप सभी सुन रहे थे एक खूबसूरत नगमा, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नैना, आपके पसंदीदा शो शक्तिका के साथ। अभी गाने पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे संघर्ष की, लेकिन इस संघर्ष का अलग पड़ाव क्या है? सफलता यानी सक्सेस। पर रुकिए, एक महिला के लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ एक ऊंचा पद या बैंक बैलेंस? नहीं, मेरे नजरिए से एक महिला के लिए सबसे बड़ी सफलता है खुद की पहचान बनाना और मर्जी से

का अधिकार पाना। आज हमारे समाज में ऐसी कितनी ही मिसालें हैं। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक लड़कियां आज आसमान छू रही हैं। कोई फाइटर जेट उड़ा रही है तो कोई सेब बागानों को डिजिटल मार्केट से जोड़ रही है। लेकिन जानते हैं इस सफलता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है संतुलन, यानी बैलेंस। दफ्तर की फाइलें भी पूरी चाहिए, घर की चाय भी वक्त पर मिलनी चाहिए। वो माँ भी है, बेटी भी और एक लीडर भी। उसे खुद के लिए भी थोड़ी फुर्सत मिलनी चाहिए। हाँ दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस सुनने में जितना फैंसी लगता है, निभाने में उतना ही मुश्किल है। अक्सर महिलाएं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं।

इस संतुलन को बनाने के लिए तीन सुनहरे नियम हमेशा याद रखें। पहला, ना कहना सीखिए। हर काम को खुद अकेले करने की जिम्मेदारी मत लीजिए। काम बांटना कमजोरी नहीं समझदारी है। दूसरा, मी टाइम निकालिए। दिन भर सिर्फ 24 मिनट खुद को दीजिए, चाहे किताब पढ़िए, चाय पीजिए या सिर्फ खामोशी से बैठिए। अपराध बोध को अलविदा कहिए। आप कोई सुपर वुमन नहीं है, आप एक इंसान हैं। अगर कभी भी घर बिखरा हुआ है या खाना थोड़ा लेट हो गया है तो खुद को कोसना बंद कीजिए। चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त नैना और आप सुन रहे हैं शक्ति का एपिसोड 2 सिर्फ रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर। तो मेरी प्यारी सहेलियों, बहनों और माताओं, और हाँ हमारे वो पुरुष श्रोता जो इस वक्त अपनी माँ, बहन या पत्नी के साथ बैठकर ये शो सुन रहे हैं, आप सभी से बस यही गुजारिश है कि अपने घर की शक्तिका को पहचानिए, उनके सपनों को सिर्फ पंख मत दीजिए बल्कि उन्हें उड़ने के लिए थोड़ा सा खुला आसमान भी दीजिए, उनका हाथ थामिए और उनके संघर्ष में साझेदार बनिए। जाने का वक्त हो चला है लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत और रूहानी गीत के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अपने रेडियो दोस्त नैना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सोने से सब।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2, सहयोग कृष्णा, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुत किया नैना ने, निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: Vaheguru Ji Da Khalsa, Vaheguru Ji Di Fateh. आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा आप दा अपना रेडियो आप जी दी आवाज दिल तो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं? कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे। इस दिल का दर्द

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

छुप जाती है और अक्सर लौट आती हो तुम शाम और सहर मेरी दुनिया में, छू जाते हो मेरी उम्मीदों को, पिघल जाते हो मेरे साथ इस बर्फीले मौसम में, अपने जज्बात कई हादिसात लिए। तुम खुशबू हो, रंगी नूर हो, भीगते मौसम में भीगती बारिश का एहसास हो, तुम मेरे हो।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के हमारे प्रसारण भी पसंद आए होंगे और आपका फीडबैक का हम इंतजार करेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो हम हर दिन आपको नोट कराते हैं, आज भी नोट कराते हैं कुछ बातचीत करने के बाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मारहटा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। दिल से दिल का कनेक्ट 90.0 FM पर मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त, आपका हमनवा भरत सोपोरी, आपके अपने रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर। देखिए ना, बातों बातों में और सुरमई गानों के कारवां में वक्त पंख लगाकर उठ गया। अब घड़ी की सुइयां बता रही है कि रात गहरी हो चुकी है और हमें आज के इस सुहाने सफर को यहीं विराम देना होगा। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की इस खामोशी तक आप सबने जो रेडियो वितस्ता के साथ अपना वक्त बिताया, उसने आज के दिन को बेहद खास बना दिया। दिन भर के संगीतमय सफर के बाद अब समय है आज के प्रसारण को विराम देने का। विदा लेने से पहले आइए संक्षेप में जाने 26 अगस्त का विशेष महत्व। पहला ओनम व श्रावण त्रयोदशी, आज समृद्ध का पर्व ओनम और सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का पावन योग है। दूसरा मदर टेरेसा जयंती, मानवता और निस्वार्थ सेवा की मिसाल नोबेल पुरस्कार विजेता संत मदर टेरेसा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तीसरा महिला सम्मानता दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को समर्पित महिला सम्मानता दिवस मनाया जा रहा है। और आखिरी विज्ञान व इतिहास, 1883 में आज ही के दिन इंडोनेशिया का ऐतिहासिक क्राकाटोवा ज्वालामुखी फटा था, जिसने भू विज्ञान के अध्ययन में नया मोड़ लाया था। यह था आज का विषय और आज की जानकारी, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रसारण के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। समापन से पहले आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं रोज की तरह, और उसके बाद दूंगा कल के कार्यक्रमों का विवरण। आज की पंक्तियां यूं हैं, वितस्ता की लहरों में बहती रहे खुशियों की धार, वितस्ता की लहरों में बहती रहे खुशियों की धार, रेडियो वितस्ता 90.0 लाया है आपके लिए ढेर सारा प्यार। रात की खामोशी में सुलाने आए हैं सुरों के ये साज, रात की खामोशी में सुलाने आए हैं सुरों के ये साज, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर लेकर एक नई आवाज, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर लेकर एक नई आवाज।

एपिसोड 27 होगा और कल की कड़ी है चेतावनी, पेश करेंगे नरेश शर्मा 9:30 बजे। पहला प्यार एपिसोड 1 पेश करेंगे भारत सोपोरियो, 10:10 पर होगा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी पंजाबी में। हमारे साथ होंगे प्रवीण वर्मा खिप्पल, पेश करेंगे आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी, 2 बजे आप बृहस्पतिवार को सुनते हैं साइबर क्राइम अलर्ट एपिसोड, और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, 7 बजे सुनहरे पल एपिसोड 8 शैलेंद्र के ऊपर ये तैयार किया गया कार्यक्रम है। और हर दिन की तरह कार्यक्रम 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है कुछ लम्हे तुम्हारे नाम। जी दोस्तों, ये था कल का विवरण कार्यक्रमों का, और आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी आप तक जो मैंने पहुंचाई, इसको तैयार किया आप सभी के लिए हमारे उद्घोषक अन्नू ने। अब अपने दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।